लगी लाउट वो चाउट सक्स हो गया मैं आखिर नहीं लाउट चाउट करने अपने नवंग में पी वाले पी एनिक पता सिला ले गया मैं आप लोगों ने तमान की वाले में अम्मा के चंग में उन्हें संग ना तमाल तलो तुंगा सुला में किसी तो सायक्समिन